स्थितं व्योमां भजत्ये कष्टमाद्वितम् सर्वभूत स्थितं व्योमां